0: A prominent businessman enters into an illicit affair with a former employee. She and her husband are now blackmailing him. Going to the police would turn his affair into a matter of public record. To keep his marriage intact and his mistake hidden, he turns to the only option left. A private detective agency run by the husband and wife team of Naaman and Nidhi Jain.
1: Hello.
0: The detectives have the identities of the blackmailers. What they need now is an address.
1: Sir, I'm talking to you. Your bank documents have come. वाले एड्रेस में, लेकिन एड्रेस ट्रेसेबल नहीं है और कुरियर पर्सन खड़ा भी है वहाँ पे. अब अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए ताकि पर्सन डिलीवर कर सके. सर डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है सर, नहीं तो रिटर्न हो जाएंगे वो. तो अल्टरनेट एड्रेस आप दे दीजिए सर.
0: With no address to go on, the team needs to improvise. Naaman discusses options with his team.
2: अब क्योंकि उसका घर नहीं मिल रहा, सारे एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस में भी जाके चेक कर लिया है, इन्होंने शायद एड्रेसेस ही अपने डाटाबेस में गलत मेंशन किए हुए हैं. तो हमें घर तो ट्रेस हुआ नहीं. सब्जी मंडी की आपने लोकेशन दी थी, सब्जी मंडी में भी जाकर उन्होंने पूरी टीम ने चेक कर लिया, सब्जी मंडी में भी कोई दिखा नहीं कहीं पर पर्सन. तो अब ये मैंने बात क्लाइंट को बता भी दी है. तो अब क्लाइंट ने क्या किया है कि अब हमारे पास एक ही तरीका था, जो आप जैसा आपने फ़ोन पर भी सजेस्ट किया था मुझे कि भाई इसको बेट डालनी पड़ेगी. अब
0: Naaman and Nidhi's detective agency originally investigated corporate espionage. But in a post-pandemic world, the growing market isn't corporate, but the business of love.
2: Out of all the cases that we undertake, pre-matrimonial cases is the maximum number of cases that we get. Our company used to book when we started around 2 to 3 cases in a month. And now we are doing 150, 200 cases in a month.
0: In India, marriage is more than a bond between two people. It's a union between families. More than 90% of marriages in India are arranged. Love marriages, on the other hand, are typically seen as an act of rebellion. Unfamiliar with this relatively recent approach, parents are turning to detectives for help. Nitesh and Vandana Sethi are concerned about their daughter, who has fallen in love.
2: किसी भी तरीके शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम जो है उनके सिर्फ नेगेटिव्स को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि आप डॉटर को कन्विंस कर सकें दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर हर.
0: बैकग्राउंड चेक्स लाइक प्रीवियस और करंट मैरिजेस, अफेयर्स, मेडिकल हिस्ट्री, इवन पर्सनल इंडल्जेंसेस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट.
2: कि हम लड़के को फिजिकली फॉलो करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, जस्ट इन केस अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है, जैसे कि स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, या फिर किसी और गर्ल से अगर वो मिल रहा है, किसी बैड हैबिट में है, तो किसी रॉन्ग कंपनी में है, तो हम उस केस में उसे कंप्लीट वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं. क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डॉटर के लिए भी नेगेटिव हो. Basically, ये केस है कि जिसमें their daughter has fallen into love with a boy and the family is a very rich family, right? And they are big industrialists, and now the daughter has fallen into love with a boy who does nothing at all, and they have heard very wrong things about the boy. They have tried to convince their daughter, but she is not ready to agree to anything. People start, you know, integrating and saving money for this for his marriage right from the start, from the time the child is born, and they have got a lot of dreams attached to this, you know, children's wedding. But now once the children decide to go ahead with such a kind of marriage, they feel that what have we earned for? We cannot predict the outcome of any case, but as far as I could hear them, I found out, you know, the boy to be a little fishy.
0: Meanwhile, the detectives begin a digital forensic investigation and assemble a dossier on the unsuspecting young man.
3: Another part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form, if he's residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available. After we download the electoral roll, we have the data.
0: They discover the boy has two separate registered residential addresses. other red flags are raised.
3: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
0: It's time to gather intelligence on the ground. Nidhi heads out with trainee detective Kajal.
4: तो जैसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके नेबर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से हम लोग बात करके और डिटेल्स निकाल सकते हैं तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन और इजी पड़ेगा और जैसे कि मैं लोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जा रही हूँ तो माइट बी आई गेट मोर डिटेल्स ऑफ इट और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को बेसिकली हम उनके अगर घर जाएंगे तो हम उनको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर नहीं जाएंगे हम उनके नेबर्स से पूछताछ करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स अगर रहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं फिर उनके फ्रेंड्स रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं हम लोग
5: और अगर आप किसी पोजीशन पे खड़े हो जैसे ये सपोजिंगली ये घर है आपको यहाँ पोजीशन लेनी है तो आपको डे वन जब आपका पोजीशन डे वन है आज एक घंटे पहले आके या दो घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो जैसे अब ये घर है ये कॉर्नर हाउस है आप यहाँ पर रह सकते हो यहाँ पे चाय वाला है यू कैन इजीली स्टैंड यहाँ पे दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में सीसीटीवी तो नहीं है आजकल मोस्टली हाउसेज में सीसीटीवी है तो अगर सीसीटीवी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीसीटीवी के एक्सेस में नहीं आना चाहिए आपकी पोजीशन वहाँ हो कि सीसीटीवी आपको कैप्चर ना कर सके
0: It's time for the rookie detective to put her skills to the test.
4: Namaste, मैं काजोल बैंक से हूँ लोन वेरिफिकेशन जी मैम आपका कोई लोन नहीं है वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ आपके पास में कोई रहते हैं उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था
6: कोई लोन
4: हाँ ओके तो यहाँ पे रहते ही नहीं है
6: मम्मी पापा तो उनके यही रहते हैं
4: और उनकी मदर
6: मदर तो उनकी
4: उनकी हाँ उनकी मदर उनमें गारंटर है समझी नहीं मैं
6: तो है पहली वाइफ थी
4: ओके
6: वो 8 साल हो गए हमें अब जो है
4: हाँ उनका नाम क्या है
6: उनका नाम है
4: ओ
6: अब तो पापा से भी नहीं बनती
4: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है
6: अच्छे नहीं है साल दो साल में एक दो बार आ गया बाहर गली में तो लोग घूमता फिरता रहता है
4: कोई बात नहीं मैडम थैंक यू डिटेल्स देने के लिए आपके समय के लिए धन्यवाद
0: Parents can choose how deep they want to dig. Most start with a $3,000 package. Unearthing deeper secrets costs more.
2: So, love and marriage are two different things for people. Even, you know, people who have been into relationship for 8 years, 10 years time, they come to us to get their partners entry because now they're entering into married relationship. Right? So, which I think is very prudent. Right? Everybody should get background checks done.
7: I remember jab humne initially business start kiya tha, talking about 20 years, 25 years back. Us time, arranged marriage ya love marriage ke liye koi proposal humare se aata tha check ke liye. To unke words ye hote the ki, I know it's not good. ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैं बैकग्राउंड चेक करा रहा हूँ बट आई वॉन्ट क्योंकि कुछ सस्पिशन है कुछ डाउट्स हैं बट अभी इट्स वेरी चेंज एवरीबडी वॉन्ट्स कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए इट इज मस्ट
0: व्हाइल लव मैरिजेस रिप्रेजेंट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल यूनियंस इट इज अ ग्रोइंग फिनोमेनन सो लव ऑडिटिंग हैज ऑल्सो बिकम अ ग्रोइंग बिजनेस
8: Your support can uplift lives in many ways. Building the confidence to become more independent. Helping families through life's toughest moments. Or bringing care and connection to vulnerable seniors. Every act of support can make a difference. Simply scan the QR code or visit mediacorp.sg/PC. Choose an amount you wish to give, and your support will go directly to those in need. Uplift lives and inspire hope. Donate now to the President's Challenge Donation Drive 2026.
9: Saturday, Japan Hour takes on Tokyo, Edo style. Brush up on tradition. Savor the art of Edo style sushi. And picture the past through Ekeyoe and Edo Kiriko. Then, from traditional artistry to artful living, step inside the creative world of Petals Tokyo. Japan Hour, Saturday on CNA.
8: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya Singapore, celebrating 33 years of timeless finesse.
10: This October, Everybody Knows Fair returns for 3 days of health and wellness at Campus One. From informative talks by doctors and health experts.
11: Don't just say, oh, my shoulder hurts because I'm getting older. That's one of the biggest misconceptions that there is.
10: To engaging demos, interactive activities, and exclusive product offers.
12: Being at the fair helps us connect with the people. We're able to spread awareness about the potential solutions for the problems that they have so that they can live their life to the fullest.
13: We wanted to let people know what are the latest techniques in toothbrushing and answer any of the questions that they may actually have, especially related to oral health.
10: The fair offered useful insights for making healthier choices every day, plus a meet and greet with your favorite MediaCorp artists sharing their health secrets.
14: Personal secret will be drinking a lot of water.
15: For me is exercising about 3 to 4 times a week.
16: You can also stay healthy by having a healthier diet, less oil, salt and sugar.
10: And hear more about staying healthy with the cast of our upcoming drama, Keep It Down.
17: Well, I play a urologist in the show and I've learned that it's nothing embarrassing to talk about issues related to your privates.
18: Remember to seek for professional help.
19: Don't neglect your mental health. Always check in with yourself.
10: It was a weekend that brought thousands together to get active and discover new ways to live well. Everybody Knows Fair is presented by Inacal. Feel strong, stay sharp. Brought to you by the following gold partners. Fast Pain Relief Panadol Can. New Polident Max Hold and Gum Protect. Caltrate UC2. 2 weeks to better mobility. The following silver partners.

0: ग्रेजुएट 90,000 पर मंथ कमाता है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
1: In the halls of this temple, an ancient tradition is taking a leaf from stock market trading floors. On offer is a low-cost community matchmaking service for Hindu families.
0: मांगलिक लड़का 33 साल 5/11 मई 92 बीटेक पीजीडीएम सर्विस एमएनसी 9 लाख का पैकेज।
1: Interested parents of prospective brides and grooms come together to see if the match is right. As rural Indians migrate to urban centers, old village connections are lost. Settings like these have become a trusted way for parents to find the right partner for their child.
2: NRI ladki UK London mein working hai. Sonam Sharma Punjabi family June 91 born 34 saal कद 5 फिट 6 बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 80,000 पाउंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड सालाना पैकेज है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
3: We announced Mr. So and So. Any girl interested in that boy? They look whatever. If there's nobody interested, then we pass. The next kid. Save left side. People are meeting and we haven't seen anything wrong, obnoxious, nothing. We are very simple here and we help people to get the kids registered.
4: मुझे दो एक महीने हो गए यहाँ आते हुए और बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ रिश्ता। तो अच्छी जगह है यहाँ पर, आपस में सब मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है, पुराने ज़माने से अलग तो नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया। अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा है, अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा कल्चर है। लव मैरिज के अंदर तो जब प्यार किसी से हो गया, लव हो गया, तो उसके बाद तो कोई कल्चर ही नहीं है।
1: But while tradition offers a safety net, stepping into the shadows can lead to a trap. A blackmailer is holding a prominent businessman to ransom. He has a compromising video of the businessman. In exchange for this video, he wants $200,000 in cash. The detectives use a delaying tactic. They deliberately miss the deadline.
5: No. मेरे को अभी एक घंटे तक तूने रात में सुबह में जहाँ मर्जी मिल लेंगे, पेमेंट आएगी मेरे पास 100% आएगी।
1: The businessman gets the blackmailer to agree to a reduced sum of $27,000. The detectives have just 2 days to find the extortionist. Otherwise, the victim will have to cough up the cash. The clock is ticking. The blackmailer's wife is the businessman's former office manager. She was in charge of collecting payments. The enterprising employee diverted company funds into her own bank account and was caught red-handed. She then makes a proposition.
3: Now she started crying, right, that, you know, my husband beats me up, he, you know, he abuses me at home, you know, he needs 15,000 rupees every month from me, what do I do, like, you know, and I cannot return the money back to you, but, you know, I'm ready to do anything that you want me to do for you.
1: The businessman thought he was being compensated for his loss with a fling, but she was two steps ahead. While he was booking a hotel room, she plotted.
3: And this time when she met him there, you know, she asked her client to remove his clothes. Right? Once he removed his clothes, you know, she took out his mobile and started shooting our client.
6: 5 addresses of a subject.
1: If the video goes public, it would destroy his marriage and career. The detectives need an address.
7: What have you identified?
1: So far, nothing.
3: I tell you. उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ये सोच रहा है कि वल्नरेबल टारगेट है 65 ईयर ओल्ड पर्सन है और अब ये फंसा हुआ है कर तो कुछ सकता नहीं है उसकी वाइफ को पता है कि इसकी वाइफ है इसके बच्चे हैं उसको ये मालूम है कि अगर इसने कुछ भी किया तो ये हील बी ना बिगर सूप सो लेट अस से इफ देयर इज एनी क्राइसिस एट ऑल इट बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स वी आर यू नो डीलिंग विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल वी आर डीलिंग विद डार्क थिंग्स ऑल द टाइम
1: While the team hunts for the blackmailers, a different kind of tragedy plays out. A housewife, married for 12 years, has just made a startling discovery about her husband.
8: Yeah, hi. Please tell me. After 12 years of marriage,
9: Daughter?
8: Yeah.
9: So how come you have a daughter?
8: After 5 years.
9: Oh, okay.
8: But now when I realize this, I'm thinking I cannot live with this lie. I have to end this marriage.
1: To get custody of a daughter and parental support, she needs more than just suspicion. She needs evidence, admissible, undeniable proof. The team decide to hide a listening device in the family car.
3: Brother, जो हमें कार में बग यूज़ करना है ना, वो ये GSM बग यूज़ करेंगे, ठीक है? और इसका ना मुझे बैटरी साइज़ इंक्रीज़ चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए इसमें कम से कम 3 दिन का बैटरी, ठीक है? तो ताकि वो जो ना उसको रिप्लेस अगर करे, 3 दिन में काफी रिकॉर्डिंग आ जाती है। राइट हमें क्लाइंट को देने से पहले हमें टेस्ट करना है तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं देने से पहले अपनी गाड़ी में लगाए जरूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की हाउ इज इट वर्किंग हाउ इज फंक्शनिंग
10: बस देखना स्लाइड ना हो कुछ स्लाइड आराम से हो जाए
11: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ क्योंकि उनकी अपनी कार है अपनी कार में वो खुद लगा रही है सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे
12: और हम जब भी बग प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं नॉट इन हर एब्सेंस सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी बग प्लेस करना होगा

0: The detectives have failed to get the address of the elusive blackmailer. With less than 24 hours left, they are running out of options. Their best bet is to apprehend him at the cash drop location. But with a sting operation in a public space, anything can happen. The location is set. If the blackmailer senses a trap, the compromising video will go public.
1: हाँ ताकि ज़्यादा अगर हंगामा मचता भी है वहाँ पे तो वो उसके हम टेक केयर कर सके और एक बार वो पकड़ा गया तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा और सिंपल सी बात है आपने कोई गलती थोड़ी करी आप हम कोशिश लेकिन फिर भी हमारी यही रहेगी कि ऑफिस में पहुँचने से पहले ही उसको नीचे से ही हम लोग उठा लें ठीक है टीम चारों ओर स्प्रेड होगी ठीक है तो हमने पूरी उसकी प्लानिंग करके रखी हुई है तो आप हाँ हम जो है उसको कोशिश यही करेंगे उसको नीचे से ही उठा लें
0: The detective agency has roped in the help of the police, who will conduct the raid.
2: Strategy के अनुसार हमें से कहीं बाहर लेना है।
3: ऑफिस सही जगह है, वहाँ भीड़ भाड़ है, हमारे आदमी छिप जाएंगे। और अगर इसने कहीं अकेले में बुला लिया ना, चेंज कर लिया, तो हम फंस जाएंगे।
0: But as the drop time approaches, the tracking signal begins to behave erratically. The phone is moving. But not towards the drop site. Could it be a decoy? Time's running out. The team must push forward with the sting. The police are planning to apprehend the blackmailer as soon as they can confirm his identity. The trap is in place. The police are in position. Now, they just need the target to walk into their crosshairs. The detectives wait in the background. While the police conduct the operation. The raid is a success.
4: But the problem is this ki usne apna phone apni wife ko diya hua tha. Right? Aur hum subah se usse trace karte uski location. So hume laga ki ye kahin pe Delhi mein roam around kar raha hai, pata nahi he'll come for collection of the payment or not. और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ही केम फॉर द कलेक्शन ऑफ पेमेंट विदाउट हिज मोबाइल एंड हिज मोबाइल वाज रोमिंग अराउंड समवेयर एल्स हिज वाइफ इज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर वाइफ जो है अभी तक किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंची नहीं है तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको कहाँ से पिक कहाँ से करें उसकी वाइफ को या ही इज नॉट विद एनी मटीरियल राइट नाउ यू हैव टू कलेक्ट द मटीरियल नाउ तो वो मटीरियल कलेक्ट करने के लिए हमें जो है वो उसकी वाइफ को पिकअप करने आना पड़ेगा
0: द पुलिस हैव द हस्बैंड इन कस्टडी बट नॉट द इनक्रिमिनेटिंग वीडियो That footage is in his phone with his wife, who is still at large. They bring in her brother to help convince her to surrender.
1: So basically, अभी क्या है कि it's about to be solved now. तो अभी क्या हुआ है कि his wife has come inside. उसके पुलिस ने pressurize करके उसे सारे उसके laptops, memory cards, mobile phones मंगा लिए हैं. She knew that she has got struck. ठीक है तो obviously you know she is all under pressure कि they would also get arrested it's not that she can file a fake case now and she will be left तो अब जो है obviously उसे against आएगा तो
2: सबसे बड़ा challenging तो यही था कि भाई एक तो हम extortionist को पकड़ लें दूसरा जो evidences जो भी हो जिसके basis पे वो blackmail कर रहे थे वो सारे हम लेके और वो recover हो जाए बस
1: पहले smart game play किया she was roaming around तो इस वजह से हम उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके तो ट्रेस करके वहाँ से उसको उठा नहीं पाए वो सबसे चीज़ चैलेंजिंग लगी हाँ। और फिर जब वो आ गई थी और एकदम से आगे उसने हंगामा मचा दिया मैं रेबर केस डाल दूंगी पीछे से किसी ने उसको समझाया होगा तो उसको इंटेंसिटी नहीं पता थी सिचुएशन की वो आते ऐसे बोलने लगी तो हमें लगा कि कोई और बहुत बड़ा हंगामा ना हो जाए बट जब उसने रियलाइज़ किया कि इंटेंसिटी इस केस से कितनी ज़बरदस्त है और जब उसके हस्बैंड ने भी उसको बताया उसके हस्बैंड के भाई ने भी उसको बताया तो फिर वो एकदम से सबसाइड हो गई ना तो अब वो रो रहे हैं आप तो दोनों
2: नहीं ठीक है हमारे को भी यही डर था कि कहीं वो जो लेडी है वो एविडेंसेस को कहीं छुपा दे या वो कर दे तो वो अल्टीमेटली उनको हमने पकड़ा तो उसे मैट्रेस में रिजॉल्व
0: द कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो इज सिक्योर्ड For the businessman, it's a quiet drive home to a wife and family who will never know how close they came to seeing him in the tabloid news. The case is closed. His secret buried. His public image intact.
5: Go casually.
6: Hello.
5: Talk to him.
6: Mm-hmm.
5: And just be in the moment.
0: Meanwhile, the housewife suspicious about her husband's sexuality may finally get the conclusive answers she needs. An undercover agent is heading to meet her husband. He's equipped with a special jacket. Hiding in it is a pinhole video camera. If all goes to plan, it will record everything that happens.
5: Just started recording. Call the guest.